0: यू है 16-17 साल की पर लड़की ही कमाल की।
1: लोना बेहमिन यू है मिस्टर खान।
0: वेयर डू यू फ्रॉम?
1: आई फ्रॉम अ चाइनीज।
0: ये डिस गया है मेरा डिप्पी तो सगया है।